मैं भी निष्मा जोश भाष मेरो मोना जादी एररी मुनुक्वार ओंगशेत का सिंसर फमु अगेंस तंगा शेत के अगेंस अगेंस नेस्ता सिस्टा कुरु ताऊं रिबु एगेका शेत का एगेका सिंसर फेंस एफेंस यारान एचिरा मोना मोटु रहा मोरु आहाइविन और झुमझा यहाँ से मेरे